0: कहाँ छूटे।
1: भैंस कटे लख उठ धावे,
0: माया पाछे पावे।
1: अनंग भोग मिखिया के करे,
0: थर थर मरे।
1: बिना संतोख नहीं को राजे,
0: सुपर मनोरथ बिरथे सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याही है जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कार नाउ निधि आवे ताए। सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता। तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू चेतावन चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान प्रसादान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शनी शनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पात दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओटने आसरिया दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है। आप जी ने कृपा रहमत की सब तो पहला आप दिया प्यारिया संगता ने संगति रूप सचे पातशाह जीओ सुखमनी साहब जी दे जाप किए हैं। उपरंत सोदार रहरा साहब जी दे पाठ हुए हैं। समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल चुक की खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी का भाव आईया संगत दासरिया के हिरदे ते वसाउणा सब दिया दर हाजरिया तिल फुलपे ढावा प्रवान करनिया। दरों घरों नाम दान चढ़दी कला की दात बख्शनी परिवारों में सुख शांति कारोबारों में वादे करने। अरदास बेनती है संगतां वालों हरनाम सिंह की चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती रहमतां प्रयत रखना। हरजिंदर कौर की याद विच परिवार वालों अरदास बेनती रहमतां प्रयत रखना। बीबी ज्ञान कौर दे जन्मदिन ते सच्चे पातशाह जी शुकराना करदिया तंदुरुस्ती वास्ते अरदास बेनती चढ़दियां कला बख्शनियां। सब दिया गुरमत अनुसार मनोकामना पूरिया करनी आप दे बख्शिया खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है। करी पाक साल सोच पवित्रा लाम भोग हर राय आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। श्रीमुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिना मिले आम दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा
आज्ञा पही अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है।

सो इतनी सेवा प्रवान करनी आओ प्यार सत्कार सहित अमृतमयी बाणी की विचार श्रवण करिए सत्कार योग यानी अगन सिंह जी उन्हां पासों प्यार सत्कार सहित श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सह री मन लिखे चल लिखे बैसे लिखे लेंदा सह सदा कीर्त कर नानक हर की उभरे सतगुर चरण ओटा। हसम हल्ला पंजवा अपुष्ट बात की पई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मैं रतन पर गास्यो मलीन बुद्ध हशनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर नाम फल पाई सत गुर मिलई रहाओ मोहे किरपन को कोई ना जानत सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कही ना पावत हुन सगल चरण सेवई आठ आठ को फिरत ढूंढती मन सगल तृष्ण बुझ गई एक बोल पी खावत नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो हो जन नानक हर शरणई। हसम हल्ला पंजवा रे मूड़े लाहे कौ तू ढीला ढीला तोटे कौ बेगताया सस्त वखर तू किने नाही पापी बदारे नाया सतगुर तेरी आसाया पतत पावन तेरो नाम पार ब्रह्म मैं एहा ओटाया रहाओ गंदन वैन सुने और जावे नाम लैत हलकाया निंद चिंद को बहुत ओमाहे हो बुझी उल्टाया।

0: साच धर्म सिरच नहीं आवै सत सुनत सोहाया दीन दयाल कृपा प्रभ ठाकर भगत टेक हरनाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया
1: संग संग लपटाए मोह माया कर वादे जह जानो सो चीतन आवे अहू बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों नारा दे काज कोठरी माए तू बसता संग सगल विखे की ब्याह दे रहा मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पल खिन शीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुबाए झूठ धंद दुर्गा दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बिधाते बहर बहर जन्मा दे जो पहु कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे कहो नानक दिन रहन त्याव मार काढ़ी सगले उपादे हो इयों जप्यो भाई पुरख बिधाते पहु कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहा दूजा सा महला पंजवा निमख काम स्वाद कारण कोट दिन सुख पावे करी मोत रंग माने फिर बौर बौर पछतावे अंधे चेत हर हर राया सो तेरा सो दिन नेड़े आया रहा पलक दृष्ट देख पूलो आक नीम को तमूर जैसा संग बसियर स्यों है रे तैसो ही हो पार ग्रह बैरी कारण पाप करता बस्त रही अपमाना छोड़ जाए तिन ही स्यों संगी साजन स्यों बैराना सगल संसार ए बेद व्याप्यो सो उबरियो जिस गुरपुरा कहो नानक पव सागर तरियो पै पनीत सरीरा सा महला पंजवा दो पदे लूक मानो सोई तुम पेखियो मूड़ मुगद मुकुरानी आप कमाने कूले बादे फिर पाचे पछतानी प्रभ मेरे सब विद आगे जानी भ्रम के मूसे तू राखत परदा पाछे जी की वी मानी रहा जित जित लाए तित तित लागे क्या को करे पुरानी बख्श लियो पार ब्रह्म स्वामी नानक सद कुरबानी आसा महला पंजवा अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जय जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावे सेवक को निगटी होए दुखावे जो जो कहे ठाकर पै सेवक तत्काल हुए आवे रहा ते सेवक हौं बलिहारी जो अपने प्रभ भावै तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवे आसा घर यारवा महला पंजवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद नटुआ पेख दुखावे बहु बेद जैसा है ओ तैसा रे अनक जोन परम्यो परम पीतर सुखे नाही परवे सारे साजन संत हमारे मीता बिन हर हर अनीता रे सा संग मिल हर गुण गाय जन्म पदार्थ जीता रे रहा त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी कहो कवन बिद तरिये रे कुमन के रगा गाखरी गुर सबदी पारियो तरिये रे खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक यो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पति आना रे आसा महला पंजवां दोपदय गुर प्रसाद मेरे मन वसिया जाओ जो मांगो सो पावो रे नाम रांगे ओ मन त्रिपताना बौर न कतहूं तावो रे हमरा ठाकुर सब ते ऊचा रैन दिन सतिस गावो रे खिन में थापयो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे राव जब देखो प्रभ अपना स्वामी तू अवर चीत ना पावो रे नानक दास प्रभ आप पहराया परम भाव मेट लिखावो रे आसा महला पंजवा चार बरण चौहा के मर्दन खट दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर भीर सो कौन बलीरे जिन पंच मार बेदार गुदारे सो पूरा यो कलीरे राव वड़ी कौम वस भागे नाही मुकम फौज ठलीरे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कह चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे राव बहुगुण धुन मुन जन खट बेते अवर न किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सजारी साध संग नानक पीकी रे आसा महला पंजवा अमरी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते टारी रे राव दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी कर तारी रे हिर राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे आसा महला पंजवा निकी साध संगानी राव पहर मुहूर्त पल गावत गोविंद पहर मूरत पल गावत गावत गोविंद गोविंद वखानी चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौर तू ठाकर गौरो नानक सरण पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एको अंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियान पा पज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसे इशार सो प्रभ जानिए साध संग गुर प्रसादी बूजिए कहर कह रंग राव शरण सम्राथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापव जल लंगी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख न जम पुर होए नाम निदान सो

त्याग सगल सियाणपा आठ पैर प्रभ जाप मीत सखा सुहाए संगी उचग में अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख वड्डी वड्याई जाप जीव नानक नाओ आसा महला पंजवा उदम करो को रावो ठाकर पेखत साधु सांग हर हर नाम चुरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन में राम नामा जाप

हमरे वस किछु नाहि, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे, मजन हर जन तूरा, पाए भगत परम पौ नासे, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगम्या गोचर दर्स तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ तारी, सतगुर बख्शिया हर नाम, कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड जे मुगद होते, सबद लगे तेरी सेवरा, तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता, सब मेरे हास माए, धर्म राजा विस्माद हुआ, सब पई पैरी आए, सत युग त्रेता द्वापर भणिए, कल युग उत्तम जुगा माए, एह कर करे सो एह कर पाए, कोई ना पकड़िए किसै थाए, हर जियो सोई करै जे भगत तेरे जाचे हो तेरा बिरद, कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संता, देह हर दर्श रागास। महला पंजवा, कर तेरवा एको अंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे राव, महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उदारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा दियो कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे राव, मोह कुटंब विखे रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथ्या मनोरथ सुपन मन आनंद, उलास मन सुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिलत मर्म न लहे, कर कृपा राखे सत संगे, नानक शरण आहे। आसा महला पंजवा, तिपदे वाह प्रेम प्री राव, कनक मानक गाज मोतियन लालन, नह नहा नहीं राज, न भाग न हुक्म न साधन, किछ किछ ना चाही, चरणन सरणन संतन बंदन, सुखो सुख पाही, नानक तपत हरी, मिले प्रेम प्रिया। सा महला पंजवा,

संयमा ठाकर चरण सुहावे हर संतन पावे राव आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक आसा दर्श प्यासा आनना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा।

जिस सतगुर भेटिया सो जन निचल थिया। आसा महला पंजवां घर चौदवां एको ओंकार सतगुर प्रसाद ओन ओह निहुन वेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रा जो प्रभ पावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै प्रभ संग मलीजै एहो मन दीजै नानक नाम मिलै अपनी दया कर। आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे राव सिमरत शास्त्र भव कर्म कमाए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिकार माया माद सोयो सूझ बूझ न आवे पकर केस जामे उठारियो तब ही घर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हिर वित चित दुखाही खिन भंगना के मान माते असर जाने नाही रहा वेद शास्त्र जन पुकार सुने नाही डोरा उठ बाजी हर मुका पछतायो मन।

जिन सब थापी थापी उथाप सर्ब निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप। गो तू पर सागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर सुख माने पेटे गुर पीर एको साहेब।

जग उपजे बिन से पत खोए, गुरमुख होवै बूझे सोए। मोगो भो मोला भार फार, अटल अछल गुरमती धार। भाई मिले भावे पैकार, नानक नीच कह बिचार। आसा महला पहला, एक मरे पंचे मिल रोवै। हौमे जाए शब्द मल तोवै, समझ

करण कारण सबसे सिर तू ही राव। मुए को रुवे दुख कुए सो रुवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए। आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना। हौं बलिहारी सत गुर चरना, गुर बोहत शब्द पै तरना। निरभउ आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जग शोत। दुर्मत बिन से क्या कह रोत, जन्म मुए बिन भगत सरोत। मुए को सच होवत मीत, त्रै गुण रोवे नीता नीत। सुख दुख पर हर सहज सुचीत, तन मन संपो कृष्ण प्रीत। पितर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख। कर्म धर्म बहु संख असंख, बिन भय भक्ति जन्म बिरंथ। हर गुण गावे मिल परमानंद रंथ। वामरे मारे पी आप, आप उपाय थाप उथाप। सृष्टि उपाय ज्योति उं जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात। सूत के अगना पखै जग खाए, सूतक जल थल सब।

से भाई गुरु सिख से गुरु है एको गुरु उपदेश लाए राम नाम मत देवे नानक मिलन सुभाए एकोंकार सदोशाद आसा शांत महला चौथा कर दी जा हर हर करता दुख विनाशन पतत पावन नाम जियो हर सेवा पाई परम गत बाई हर उत्तम हर हर काम जियो हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए हर नाम जपिए अस्तर होवे जन्म मरण दोवे दोवे दे सहजे ही सुख रोवे हर हर कृपा तारो ठाकर हर जपिए आत्म राम जियो हर हर करता दुख विनाशन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल जुग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो गुरमुखर पढ़िए गुरमुखर सुनिए हर जपत सुन दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख विनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया गढ़ जानन अज्ञान देर गवाया हर हर नाम तिनी राध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल जो गौतम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पंदर मान जियो हर प्रीतल गाई हर नाम सकाई परम चूका आवन जान जियो आवन जाना परम पाबागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे हर हर ना सुहाया जिन हर त्याया तुर पाग लिवाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम संग पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मेल लगाना ते जन प्रदाना ते उत्तम हर हर लो जियो हर नाम डाई हर नाम सकाई गुर शब्दी हर रस भो जियो हर रस भोग महान जोग बट भागी हर रस पाया सेतन वडे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम से आया जन नानक रेण मंगे बगसाधु मन चूका सोग वजोग जियो जिन हर मेल लगाना ते जन प्रदाना ते उत्तम हर लोग जियो आसा महला चौथा सतयुग साव संतोख शरीरा पग जारे धर्म त्यां जियो मन तन हर गावे परम सो गावे हर दे हर गुण ज्ञान जियो गुण ज्ञान पदार्थ हर हर करदास शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर पव एको दूजा एवर न कोई हर हर लिव लाई हर नाम सकाई हर दर कै पावे मान जियो सतयुग साव संतोष लीला पग चारे तरम त्यान जियो चेता जुग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौदा खिसकिया त्रै पग डिगया मन हिरदय क्रोध लजाए जियो मन हिरदय क्रोध मां बिसरोध निरप तावे लड़ दुख पाया अंतर ममता रोव लगाना हमें अहंकार वधाया हर हर के बाद तारी मेरे ठाकुर बेक गुरमत हर नाम लै जाए जियो तेता जुग आया अंतर जोर पाया जद संयम करम कमाए जियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान पाए जियो तप तापन तापे जग बन रंबे अंत किरिया करम कमाए जियो किरिया कर कमाया पग दोए किसकाया दोए पग टिके टकाए जियो महा जोत जोत बकीने बिच हमे बचे बचाए जियो दीन दयाल गुर साध मिलाया मिल सतगुर मल जाए जियो

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

साहेब जी गोड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे आस्पदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माहि मिटावो सिमरो जास विसंबर एकै नाम जपत अगंत अनेकै वेद प्राण सिमर सुधाख्यर किन्ने राम नाम एक अख्यर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी नावे कांखी एक दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्व नाम वसे प्रभ कै सिमरन दुख जम नसे प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कश बिघन न लगे प्रभ कै सिमरन अंधन जागे प्रभ कै सिमरन भाव ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साधक संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझय प्रभ कै सिमरन सबके सिजय प्रभ कै सिमरन नाहि जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण नासा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माए समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नान जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पदवंते प्रभ को सिमरे से जन प्रवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से

सगल घटाको देवो दान, करन करावन हार स्वामी सगल घटाके अंतर जामी, अपनी कदम जान आपे आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम, जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम में उद्दम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन खानी।

करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, सब सुनाए किस करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथाह। जाके अंतर बसे प्रव्याप, नान तेजन सह समात। सुने अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए ले निभावे। काम बजार तबूजे डोरा, निस्कहिए तो समझे भोरा। काम विष्णु पद गावे, गोंग जतन करे तो भी सुरभंग। कै पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू आस गवन। करतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। संग सहाय सुहाविन चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह भीतर वसे, अंध खेल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल ना आवे मूड़े चीत।

कछ बौर सावले अग्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त से आगे राखे प्रभ की आज्ञा, माने माथे उसते चौगुण करे निहाल। नानक साहेब सदा दयाल। अनक पांत माया के हेत सरपर होवत जान, नेत बिर की छाया सिम रंग लावे। ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दी से सो चालन हार। लपट रे उतय अंदंदार, बटाओ से जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाए। मिथिया तन तन कुटुंब सवाया, मिथिया हमे ममता माया। मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आप सुपर करत गुमान। आस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर कोहिरे। मिथ्या नेत्र पेक्ष परतिरिया रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चन पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोह लुभावे। मिथ्या तन्ने पर उपकारा, मिथ्या वास लेद विकारा।

तरस ना जे प्रसाद सुसा जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुसह समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तुम प्रकट संसार तिस प्राको मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाव जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद पावे साच रे मन मेरे तू दास राज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा दे होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्वनिधान प्रभ तेरी मैं आपो कछु न किन्हू लाया

साध के संग न मनते विसरे साध संग सरपण निस्तर है साध के संग लगे प्र मीठा साधु के संकट का डिठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानन साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने देता बख्याने साध की उपमा तय गुण तय दूर साध की उपमा रे भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा मूंचते मूची साध की शोभा साध बने आए नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन कोए

सब को सोग ब्रह्म ज्ञानी कह दिष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों बसदा को खोदे को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह नानक ज्यों पावक का सह सुहाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मनोय प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी के नायमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊँचे ऊंचा मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रव्याप करे।

रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध आगत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपरहाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक मुरधारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकर नमस्कारे, नानक ओ अपरस सगल निस्तारे अस्परी।

भिखारी नीच का साजा कहूं अब कीर्त में आवे कहूं भला भला कहावे जो प्रभ राखे तिवी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू हो पंडित करे व्याख्यान कहूं मोहन धारी लावे ध्यान कबू तर तीर्थ स्नान कबू से साधक मुख्यान कबू कीट हाथ पतंग हुए जियान जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभ पावे तिवे नचावे जो तुझ भावे सोई होए नानक दूजा न कोए कबू साध संग देव पावे उस स्थान ते बोर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं मिनास मंथन नाम रते एक रंग सदा से पार कह संग ज्यो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नान प्रभ कह सतगुरबान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नान गर्म गले

फिर चया सबके साथ आप कीनो आपन विस्तार सब किस का ओ करने हार उसते भिन कहो किसोए तां दिनंतर एक सोए अपने चलत आप करने हार कौत करे रंग पार मन में आप मन अपने माए नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरप्रसाद किने वख्या नहीं सच सच सत सब कीना।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सात पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अशपरी। सतगुर सिक्की करे बिरतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरे गुरु बचनी हर नाम चिरे सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिक विकार ते हटे। सतगुर सिको नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है सतगुर सिका हलत पलत सवार नानक सतगुर सिको जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आग्या मन में सह आपस को कर कछ नान जनावे हर नाम हृदय सत्यावे मन में चे सतगुर के पार ते सेवक के कार्ज रास सेवा कर तो इन्ने कामी तिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेव गुर की मतले भी सविस्व गुर का मन माने सो सेव परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनगवार गुर को मल जाओ सर्वनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जान जन्म पार ब्रह्म एक आपने एक छपरम सह सियाण बलिया ना जाई है नानक ऐसा गुरु भागी पाई है सबल दर्शन पेगत बनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेड़ संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन करन गाने मन संतोख आदम बतिया ने पूरा गुर अख जागा मंत्र अमृत दृष्ट पिखे ओ संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तिस लय मिलाए जे वाहेक उस्तद अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी गम गोचर पर निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किनन पाई अनक भगत बंदन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सत बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिन प्रसाद है सब प्रभ जपने

साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानके धन सारसपरी संत जन अमल करो विचार एक सिमर नाम अधार और पाव समीत विसार चरण कमल हृदय में और धारो कर्ण कारण सो प्राव सम्राथ दृढ़ कर गह हो नाम रबाते तम संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माए सरो रो नान मिट जाए जिस धन को चार कुंटल धावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो को निदबाशे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सो बा को करे भली करनी सा सो बा भजर की सरनी अनको भावी रोग न जाए रोग मिटे हरे औखत लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दर गए प्रमान मन पर बोधो हर के नाए दै दिस्तावते आवे ठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय से हर सोए काल तारती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख भाओ भाओ इनसे पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए वसे अवनासी को नानक काटी जम्पासी तत्व विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा

पूर्यो प्रव्यापन विस्तार एक ते भय एक रात प्रास गए मानता ने अंतर एक प्रवृत्ता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत

बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सदा की सुध कर्म खान की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया पारपूर।

काश में तोज कहि जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजय तिरपह महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रयन कहत तुवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भजंग प्रयात शांद

प्रमविदे नमो सहत्रिपाने नमो अहत्रिमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखिय परमीय भोगिय भुगते नमो जोग जोगे हरम परम जुगते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे

एवं सर्वं काले सर्वं पालहेरुवाल शांतव प्रसाद आदरूपे अनाद मुहूर्त अजोन पुरखे अपार सर्वमान त्रिमान देव पेहवादि उदार

पवित्रे पार्थिसे अधिसे अदृसे अकृसे भगवती शांतवे प्रसाद कहते क्या छेद देस है क्या भेज भेस है।

सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हमता के सर्वत्र गमता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र दरान है के सर्वत्र पराण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पहन है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन अल वजू है तुम अमल रुजू है

प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे नंगंग स्वरूपे अपंगं बेपूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी न महे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्री कह मितो मी कह दैवं प्रवाह अजय है अजा है भगवती शांत व प्रसाद के जाहर जहूर है कहार।

सनल जुमाल है गनी बोल के राज है गरीब बोल निवाज है हरि फुल सिकान है हिरासुर फिकान है कलंकंग परनास है सुबह तोल निवास है अगंजल गनीम है हृदय रहीम है

पिता कटम सहत स्यो पवित संघ सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर।

हर नाम को निस्तार। बिखे बिलास कही तो बहुत तेरे चलतन कछु संगार। इष्ट मीत नाम नानक को हर नाम मेरे भंडार। टोडी मोहल्ला पांजवा नीके गुण गाओ मिट ही रोग। माख मुख उजल मन निर्मल होई है। तेरो रहे इहा उहा लोग रहाओ। चरण पखार करो गुर सेवा मने चिरावो भोग। छोड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होगा। संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोगा। कहो नानक एक बिन दूजा अवर न करने जोग। टोडी मोहल्ला पांजवा सतगुर आयो सरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोभा। चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूजे दूजी ठाहर। हार भरियो तो दुवारी लेखा छोड़ अलेख छूट। हम निर्गुण लेहो अबहारी सद बखसेंद सदा मेहरवाना सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछ परियो राख लेहो एह बारी। टोडी मोहल्ला पांजवा रसना गुण गोपाल नित गायन। शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दूहू ते छूटे भव जल जगत तरायण। खोजत खोजत तत विचारियो दास गोविंद परायण। अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी मोहल्ला पांजवा निंदक गुर कृपा ते हाट्यो पार ब्रह्म प्रपै दयाला। सब कै बाण सिर काट्यो रहाओ। काल जाल जम जोहे न साकै सच का पंथा थाट्यो। खात खर्चत कशन खुटत नाही राम रतन तन खाट्यो। पसमा भूत हुआ खन पीतर अपना किया पाया। आगम निगम कहे जन नानक सब देख लोक सबाया। टोडी मोहल्ला पांजवा कृपन तन मन कैल वेख परे साध संग भजन कर स्वामी। ढाकन को एक हरे रहाओ। अनक छेदर बोहित के छोटकत थाम न जाही करे। जिसका बोहित तैस अरादे खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाह वे उहां ही है तरे। जोर सख्त नानक किछ नाही प्रभ राखो सरण परे। टोडी मोहल्ला पांजवा हर के चरण कमल मन त्याओ। काट कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास। ताको बिघन को लाकै जाकी प्रभ आके अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूर्ण सुख दाता नानक हर हर टेक। टोडी मोहल्ला पांजवा हर हर नाम सदा सद जाप। तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वस दी कीनी आप रहाओ। जिसके से फिर तेन ही संभाले बिन से सोग संताप। हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया धारी हर नाथ। नानक सरन परे दुख पंजन जाका बड प्रताप। टोडी मोहल्ला पांजवा स्वामी सरन परियो दरबारे। कूट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे। साध संग परम गत पाईऐ माया रच बंद हारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे। नानक नंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी मोहल्ला पांजवा घर तीजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु न थोरी। तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ। अपन राम न चीनो खिनवा जो प्राइस अपनी मनवा। नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाहे वाहु चित लायो। सो सांचियो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परिया गुर प्रसाद नानक को तरिया। टोडी मोहल्ला पांजवा हमारे एक है हरी हरी
आन अवर सजान ना करी रहाओ वडे पा गोरे अपना पायो गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो हर हर जाप ताप वर्तने मां हर हर त्याय कुशल सब खेमा अचार बिहार जात हर गुनिया महानंद कीर्तन हर सुनिया ओह नानक जिन ठाकर पाया सब किछ तिस के ग्रह मैं आया टोडी मोहल्ला पांजवा घर चौथा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर निहो ना होए रहाओ हो टटेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुर माथा ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी मोहल्ला पांजवा गर्भ गहलड़ो मूड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो डीहर न्याई मोय फाके उरे रहाओ कणो कणो कणो साद लोड़ै बिन लहने कैठे पायो रे महराज रो गाथ वाहो से लिबड़ियो नह भागड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे जाको लहनो महराज री गांठड़ियो जन नानक गरपास ना पौ

प्रतज्ञा आई, एकादशी व्रत रह काहे को तीर्थ जाई। पंत नामदेव सुकृत समत पै गुरमत राम कह को न बिकुंठ गए। तीन छंदे खेल आछ रहाओ कुम्हार के कर हांडी आछ, राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछ, रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछ, पैसर माथे सींग गो देवल मदे लिंग आछ, लीग हींग सिंह सो देवल मदे लिंग

तो दर्शन की करो समाहे, मैं दर मंगत भीख्या पाए रहाओ। केसर कुसुम मृग में हरणा, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत नेहि सर्वे पार मल करना। कह पट भांडा कहे ना कोए, ऐसा भगत वर्ण मैं होए। तेरे नाम निवे रहे लेवलाए, नानक तिन दर भीख्या पाए। तलांग मोहल्ला पहला घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एहो तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लाभ रंगाए। मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए। हो कुरबाने जाओ मेहरबाना, हो कुरबाने जाओ, हो कुरबाने जाओ तिना कह। लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ तिना कह। हो सद कुरबाने जाओ रहाओ, काया रंगण जे थिए प्यारे। पाइए नौ मजीठ, रंगण वाला जे रंग है साहब ऐसा रंग न डीठ। जिनके

आपे नदर करे नाने कामण कांतै भावै आपे ही रावे तलंग मोहल्ला पहला या नड़िए मानड़ा काय करे आपनड़े घर हर रंगो की ना माणे सौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या टुड़े पैकिया दे सलाइया नैनी भाव का कर शिंगारो तां सुहागण जानिए लागी जासो तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत ना पावै करण पलाह करे बहुत तेरे सा तन महल ना पावै विण करमा किछ पाईए नाही जे बहुत तेरा थावै लभ लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती सौ पाईए नाही पई कामण एयाणी जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सौ पाई है जो किश करे सो भला कर मानी है हिकमत हुक्म चुकाई है जाके प्रेम पदार्थ पाई है तो चरणी चेत लाई है सोह कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा पर मल लाई है एव कह सुहागणी भैने इन्नी बाती सौ पाई है आप गवाइए तां सौ पाइए और कैसी चतराई सौ नदर कर देख सो दिन लिख कामण नौ निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एनस भाए समाणी सुंदर साए स्वरूप बचखण कहिए सा सियाणी तलंग महला पहला जैसी मैं आवे खस की खसम की बाणी तैसला करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज लै पकाबलों ताया जूरी मंगे दान वे लालो सरम धर्म दे छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो काजिया बामणा की गल थकी अगत पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े कतेबा कष्ट में करे खदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवाणिया ए पीले खेलाए वे लालो खून के सोले गावीए नानक रात का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुण नानक गावे मासपुरी विच आख मसोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वाख अकेला सच्चा सो सहब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला काया कपड़ टोक टोक हो सी हिंदुस्तान संभाल सी बोला आवन ठतरा जान सतानवे होर पियोट सी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आख सच सुनाई सी सच की बेला तलंग मोहल्ला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुक्म खसमाओ हुक्म सब वर्तनी सच सहब साचा खेल सब हर तनी सलाहो सब सच ऊपर हर तनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पाणी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वरते नानके आप झूठ को क्या गनी तलंग मोहल्ला चौथा नित ने फल कर्म कमाए बफावे दुरमतिया जब आने वलवांच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी संसार ना चेते हर नामा खिन में बिन से सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सा वेला चेतन आवे जित आए कंटक काल ग्रस सा वेला चेतन आवे जित आए कंटक काल ग्रस तिस नानक लय छाए जिस कृपा कर हिरदय वसै तलंग मोहल्ला पांजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर कर दंग आलम दुनियाए असमान जिमी दरखते आप पैदाए सुखदाए बंदे चसम दीदंग फनाए दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए रहाओ गैबान हिवान हराम कुस्तनी मुरदार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादरो दो जक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खनाए जब अजराइल बस्तनी तब चीकारे बेदाए हवाल मलूम कर दंग पाक अला भगो नानक अरदास पेस दरवेस बंदा तलंग घर दूजा मोहल्ला पांजवा तरदवन दूजा नाही कोए तू करतार करे सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक साबू पर पार ब्रह्म दतार तेरी टेक तेरा आधार है तू है तू होवनहार रहाओ है तू होवनहार अगम अगाध ऊच अपार
ਜੋ ਤਰ ਸੇਵੇ ਤਿੰਨ ਭਉ ਦੁੱਖ ਨਾਹੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਹਾਰ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ, ਤਲੰਗ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ ਰਹਾਉ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤਦ ਰਾਖੇ ਗਾ ਸਿਰ ਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ।

छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे न गावही मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मर्म पछाना अजू कछ बिखरियो नहीं अजू कछ बिगरियो नहीं जो प्रभ गुण गावै कहो नानक ते भजन ते निरपह पद पावै तलंग मोहल्ला नौवां जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहां गाफल सोया जो तन उपजा संग ही सो पी संग ना होया रहो मात पिता सद बंद जन हित जा सो कीना जियो छूटो जब देह ते डार अगन मैं दीना जीवित लो व्यवहार है जग को तुम जानो नानक।

बिसियार तू तने देह ले एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बकसंद तू हरी हले जारा खुश खबरी बल बल जाओ हो बल बल जाओ निकी तेरी बिगारी आले तेरा नौ रहाओ कुजा आमद कुजा रापती कुजा मेरे

यो अपरस सकल निस्तार अस्पदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स परत रूप न पीखे नेत्र साध की टैल सन संघेत करण सुने कहूँ की निंदा सब ते जाना या पस को मंदा जे प्रसाद विख्या प्रहार है मन की वास न मन ते टर है इंद्री जित पंच दोख ते रह नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जैसी उपरसो प्रसन्न विष्णु की माया थी हो भिन्न कर्म करत हो वै नि करम तेज वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बांछा की और भगत कीर्तन संग्रह चय मंत्र निंतर सिमरन गोपाल साहब उपर होत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानक हो वैष्णो परंग बद पावै भगवती भगवंत भगत गारंग सकल व्यापै तगल त्याग दुष्ट कर संग मंत्र बिनसै सकला परम कर पूजय सकल पार ब्रह्म साध संग पापा मलको वै तिस भगवती की मत उत्तम हो वै भगवंत की टहल करे नित नीत मंत्र निरपै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय वसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम यातम मैं सोध राम नाम सारस पीवास पंडित क्या अपने जगदीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सुख में जाने अस्तूल चौवर्ण खुद उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर्ण में जपे को नाम जो जो जपे जिसकी गत हो सात संग पावे जन कोय कर कृपांतर उतार पास प्रीत मुक्त पात्र को उतारा सर्व लोक का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम कहूँ जूत कते न पाइये धर्म नानक देश में लय जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट जान सो दास दरगा परवाने अपने दास को आप कृपा करें तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म दास ऐसी जूत नानक रामदास प्राप्त किया गया आत्मता वै जीवन मुख सो कहावे तैसा हरकत तैसा सोग सदा अनंत है नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेकाटी तैसा मान तैसा अवमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ऐसाई जुगत नानक क्यों पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जे जित करा क्या तैसा ते ना आपे करण करावण जोग जो प्रभ पावे सोई फन होग पसरियो आप होय न तथरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु विद अनक प्रकार अस्पदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार्य बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन परमदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म त्यंतार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवता नाम त्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोट भय अपमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभेगा तम निकोर कई कोट पर दर्व को ही रहें कई कोट पर दुख न करें कई कोट माया आश्रम माहे कई कोट परदेश परमाहे जे जित लावो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट से जतीन जोगी कई कोट राज्य रस भोगी कई कोट पंखी सर पे उपाय कई कोट पाथर पे निप जाए कई कोट पौन पणि वे संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससीर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतारे नानक जे जित पावे ते तेस ने स्तार कई कोट राज्य तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत और शास्त्र कई कोट की रत्न संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाके नपसाज कई कोट भूत प्रेत सो कर मृगाच सब ते नेरा है सब हूं ते दूर नानक आप अलिप्त रहे आप भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मरा कई कोट बो जो नहीं फिर कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल तक पाए कई कोट की धनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय फाणा तय तय राखे नानक साहब कई प्रभ के हाथ है कई कोट भई वैरागी राम नाम संग ते लिव लागी कई कोट पाप को खोजन थे आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन पाप व्यास तिन को मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जगत किनो विसार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक अहंकार कई कोट किने बोपांत प्राप्त हुए प्रमाय समाथ ता कयंत्र जाना कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार्वम के दास दिन हो त्यातम प्रकाश कई कोट तात के वेथे सदा निहारा एको नेत्रे
कई कोट नाम रस पीवे अमर पे सदी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ समारी नानक होए परमेश्वर।

पिता माता की आशीष निमख न बिसरो तुम कौ हर हर सदा पजू जगदीश सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत लख खुशियां पातशाहियां जी सतगुर नदर करी निमख एक हर नाम दी मीरा मन तन शीतल हुई सुखदाता पै भंजनो तुस आगै कर अरदास मिहर करै जिस मेहरबान ता कारज आवै रास सतनाम श्री वाहिगुरु जी जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीरा हियरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरहू मीरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरा हियरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरऊ मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मीरी मन भज राम नाम सब अर्था गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथा रहाउ बिन गुर मूड भए है मन मुख तिहि मूह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सीवे कब हूं तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सीवी तिन सफल्यू जन्म सनाथा मौको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधली ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा

चौपेखत ही संग सुनता। ऐसो जान पै मन आनंद आनन बियो करता। कहो नानक गुर पै दयारा हर रंग न कबहू लहता। बिलावल महला पंजवा। निंदक ऐसे ही चर परी है एह निशानी सुनो तो पाई। ज्यों कालर पीत गिरिय रहाओ जौ देखै छिदर तौ। निंदक उमा है पलो देख दुख भरिय। आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरिय। निंदक प्रभु भलाया काल नेरे आया हर जन स्यों बाद उठरिय। नानक का राखा आप प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करिय। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे भूल परे करह करावे मुकर पावे। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ। काच बिहंजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे। होवन कौरा अन होवन मीठा बिखिया मह लपटाए जरे। अंधकूप मह परेओ प्राणी परम गुबार मोह बंद परे। कह नानक प्रभ होत दयारा गुर पेटे काडे बाहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्ब सुख मोको गुरदीना रहाओ। यान पते सब पई सियानप प्रभ मेरा दाना बीना। हाथ दे राखे अपने को काहे न करते कछु खीना। बल जावो दर्शन साधु के जेह प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारो से कहूं न मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। घुर पूरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मह दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरै।

छुटे पै जम के कट कट एक रहे आ पर पूरे नानक सरण परयो दुख पंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कबहू न हो वो दृष्ट अगोचर।

सास प्रभ तुझ चितारी कृपा निद प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतिपाला आठ पहर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बिकार निस भोर पया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन गया खया मेरी मेरी कर कर मुठो पाप करत नह परी दया महाबिकार कोर दुख सागर तिस मह प्राणी गलत पया शरण परे नानक के स्वामी की बहा पकड़ प्रभ काढ़ लिया बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत कुशल पया मेरे भाई मीत रहाओ गई ब्याद उपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार सांत सुख अर अनदक नेरे प्रीतम राम हृदय व्रत और हार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को रख नहारा नानक दास सदा है चेरा बिलावल महला पंजवा गोबिंद सिमर हुआ कल्याण मिटी उपाद पया सुख साचा अंतर जामी सिमरिया जान रहाओ जी जिसके जी तन किए सुखाले भक्त जना को साचा तान दास अपने किया पै राखी पै पंजन ऊपर करते मान पही मितराई मिटी बुराई दुरुस्त

समझवा। राख लिए सतगुर की शरण, जय जयकार हुआ जगंतर, पाय ब्रह्म मेरे तारण तरण रहाओ, विश्वंबर पूर्ण सुखदाता, सगल समग्री पोखण भरण, थान थनांतर सर्व निरंतर, बर बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी, सर्व सिद्ध तुम कारण कारण, आद जुगाद प्रभ रखदा आया, हर सिमरत नानक नहीं डरण। राग बिलावल महला पंजवां, दुप दे कर आठवां, एक ओंक

0: तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। जलत अगन मह जन आप उधारे कर अपने दे राख हाथ। शीतल सुख पायो मन तिप तृपते हर सिमरत सरम सगले लाथ। निद निदान नानक हर सेवा अवर सियाण सगल अकाथ। बिलावल महला पंजवां। अपने सेवक को कबहु ना विसार हो और लाग हो स्वामी प्रभ मेरे। पूर्व प्रीत गोविंद विचार हो रहाओ। पतित पावन प्रभ बिरद तमारो हमरे दोख हृदय मत तार हो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही।
1: संत बिलावल महला चौथा मंगल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जय आया। मन सुख समाना राम गुर तुठे हर पापाया। रंग रलियां माना राम वड भागियां सुहागणी। हर मस्तक माना राम हर पव हर सुहाग है। नानक मन पाना राम निमाणया हर मान है। हर पव हर आपे राम गुरमुख आप गवाया। नित हर हर जापे राम मेरे हर प्रभ पावे सो करे। हर रंग हर रपे राम जन नानक सहज मिलाया। हर रसर थ्रपे राम मानस जन्म हर पाई है। हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सुहागणी। रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म न पाया। तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ। नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दड़ाया। मन तन रंग पीना राम भगत वचल हर नाम है। गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे। ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया। नानक प्रभ की नाराम। बिलावल महला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वड भाग। गुरपुरै वेखा लिया नानक हर लिव लाग। शंत मेरा हर प्रभ रावण आईया। हाँ मैं बिख जागे राम गुरमत आप मिटाया। हर हर लिव लागे राम अंतर कमल परगासिया। गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया। पूरे वड पागे राम हर प्रभ हर मन पाया। हर नाम वधाई राम गुरपुरे प्रभ पाया। हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया। जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है। हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया। जा हर प्रभ पाई राम जन नानक नाम विगसिया। हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुगद मिलाया। हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सबास है। जिन हौ मैं मारी राम जिन वड पागियां वड पाग है। हर हर उरतारी राम जान नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम। बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम। अवनासी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूरन पत्ते। सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मत्ते। दिन रहन ठांडी करों सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिनवंत नानक करहो कृपा लहो मोहे लड़लाया। पया समाहड़ा हर रतन विसाहा राम। खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम। मिले संत प्यारे दया तारे कथे कथ विचारो। एक चेती एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो। कर जोड़ प्रभ पे कर बेनंती मिले हर जस लाहा। बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह। साहा अटल गणिया पूरन संजोगो राम। सुखै समूह पया गया विजोगो राम। मिल संताए प्रभ त्याए बने आचर्य जानिया। मिल एकत्र होए सहज टोए मन प्रीत उपजी माइया। मिल जोत जोती ओत पोती हर नाम सब रस पोगो। बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण करण जोगो। भवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम। प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम। गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया। मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया। आनंद अणदिन वजे वाजे अंग मत मन की त्यागी। बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागी। बिलावल महला पंजवा। भाग सुलखना हर कंत हमारा राम। अनहद वाजितरा तिस धुंदर बारा राम। आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन ओ महा। तह रोग सोग ना दुख व्यापै जन्म मरण न ताहा। रिद सिद्ध सुधारस अमृत भगत परे पंडारा। बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण आधारा। सुन सखी सोहेलड़ी हो मिल मंगल गावे राम। मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम। कर प्रेम रावे तिसें पावे एक निमक पलक ना त्यागीए। गै कंठ लाइए नै लजाइए चरण रज मन पागीए। भगत ठगौरी पाए मोह अनत कतहु न तावे। बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे। बिस्मन बिस्म पई पेख गुण अवनासी राम। कर गै पूजा गही कट जम की फासी राम। गै पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अवधोत जनाया। मलन मोह बिकार नाठे दिवस निर्मल आया। दृष्टधारी मन प्यारी मां दुर्मत नासी। बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनासी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना न जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी पिर का मंगल गावे तज मान सखी मत अपने प्रीतम पावे तज मान मो बिकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरत बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोनी ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी मां वचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए ठीठ मीठी मने लागे नाम लेना आवे ग्रह बने तीरे बरत पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदुले टोहनी मोए अनाथ प्रेनाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतुराई मोहे नाही रिचावो कह मुखो नै चतुर सो कर सुजान बेती मोए निर्गुण गुण नहीं नै रूप धूप ना नैण बंके जय पावे तै रख तुही जय जय जयम पै सगल जाको करुणा पत गद किन लखो नानक पयम पै सेव सेवक ज्यो जानो त्यों मोहे रखो मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरे मोहे चात्रक तुम बूंद तृप्तो मुख परे हरे प्यास मेरी जी ही है प्राण पत्ते लाडले लाड लडाए सब मैं मिल हमारी होए गत्ते ची चितवो मिट अंधारे ज्यो आस चक विदन चरे नानक पयम पै प्रे संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुख है गामी आनंद मंगल रस कणा नवल नव तन नाहो बाला कवन रसना गुण पणा मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल महला पंजवा शंत

साधके आसन पुरख रहे। किंते नाम अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना

0: सूरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोग सुने पद झोली मंगण कै ताई भिख्या ना पड़े बाबा गुरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे सिद साधक जोगी जंग पीर पुरस बहु तेरे जे तिन बिला तकीर ते आखा ता मन सेव करे कागद लून रहे किरत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे
1: पंच करै नहीं डोलै ऐसी जुगत जोग को पालै आप तरे सगले कुल तारे सौ तूत ऐसी मत पावै एहनस सुन समाध समावै रहाओ भिख्या पाए भगत पै चलै होवै सो तृप्त संतोख अमुलै ध्यान रूप होए आसन पावै सच नाम ताड़ी चित लावै नानक बोले अमृत बाणी सुन मछिंद्र आओ तो निसाणी आसा माहे निरास बुलाए निहचो नानक करते पाए प्राणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मिलाए दिख्या दारू भोजन खाए श दर्शन की सोझी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगै मत जाई सनमुख सिद्ध पेटन को आए निहचो देह वड्याई गुरतार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हौ तुझ कौ बलिहारिया राव सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिनि त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिन को आया जप तप संजम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुरु परमेसर नानक भेट्यो साचे शब्द निबेरा राम कली महला पहला सुरते सुरत रलाइया एत तन कर तुलहा लंघै जीत अंतर पाए तिसे तू रख एनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवै सब सोजी पाए रहाओ अच्छी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चक हो टाल एथे उथे निबही नाल आपे नजर करी जा सोए गुरमुख विरला बुझै कोई तित कट दीवा निश्चल होए पानी मरे बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ न वड्डा होए जापे ज्यो सिंघासन लोए खत्री ब्राह्मण सूद के वैस निरत न पाइए गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोई नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निवन मनन तेरा नाओ साच पीट बैसन को थाओ सात संतोख होवे अरदास ता सुन सद बहा लै पास नानक बिरथा कोई न होए ऐसी दरग है साचा सोई रहाओ प्राप्त पोता कर्म पसाओ तू देवै मंगत जिन चाओ भांडै पाओ पवै तित आए तुरतै छोड़ी कीमत पाए जिन किछ किया सो किछ करै अपनी कीमत आपै धरै गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवै ना को जाए लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया

मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलया सुभाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरी प्रभ पाया अन दिन हर लिबलाई मन चंदया फल पाया स्वामी हर नाम बजी वाधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया धन हिरदय नाम विगासी

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नूं सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नाउन दयावे ताई सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तर केवल जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मरीदां हठियां तपियां सिद कवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देग चलाई तेग बाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर केवल जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लभाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चरवाए सिखी सिदक किसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर केवल जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर केवल जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथिया रियाज देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछूड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे माण सतगुरु नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ अरदास बेनती है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए आप जी ने अपार बख्शा रहमतां बख्शिश कीतियां गुरसिख परिवारां नूं मंगलमई समय बख्श कीते आप जी दी पावन हजूरी अंदर काका सिमरनजीत सिंह सपुत्र सरदार हरचरण सिंह जी सरदारनी सतविंदर कौर बच्ची हरनूर कौर अबरौल सपुत्री सरदार भुपिंदरपाल सिंह अबरौल सरदारनी अमरप्रीत कौर अबरौल दोहां परिवारां दे बच्चां दे शुभ आनंद कारज आप जी दी पावन हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है सतगुरु जी रहमत करनी सुभाग जोड़ी दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दीरगार जा माता पिता दे आग्याकार मन नीवा मत उच्ची गुरसिखी जीवन आपसी परस्पर प्यार चढ़दियां कलां दी दात बख्शिश करनी अंग संग सहाई होना पावन हजूरी अंदर चार लावां दी पार शब्द कीर्तन जी की अरदास अखरवाद काट भुल चुक माफ करनी अगों वास्ते समत बख्शना दर आईया संगतां दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां दोहां परिवारां वल्लों आप जी दा शुकराना करदियां आप जी वास्ते सुंदर रमाले हाजर होए अंगीकार करने सेवकां दे लोक परलोक पर्दे टकणे दरों करों अमृत वेले दा जागरना नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान चढ़दियां कलां दी दात बख्श के कृतार्थ करना अंग संग सहाई होना कड़ा प्रसाद दी देख दर ते हाजर है प्रवान होए प्रवान होया प्रसाद सरबत साध संगत च वरताउण दी आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श की संगतां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतावै नानक नाम चढ़दी करा तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखां को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल चह खोज शब्द में राज करीगा खालसा ख्वार हुई
ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਹੈ ਸੀਸ।

पड़ा आपे बख्श भंडारी तिसक्या गुणा का अंत न पाया हो गावा शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी किरपा कर कल धारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम विचारी शब्द लगे सही जन निस्तरै भौजल पार उतारी बिन हर साची को पार न पावै बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी काया मत रही पार पूरे पाइए शब्द विचारी जो प्रभ खोजे सही पावै होर फूट मोए अहंकारी बादी बिनसे सेवक सेवै गुर के हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारै हों मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तिने बछाता जिसनो कृपा तुम्हारी सतगुर न सहवै माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा कीजे जय मिलिए राम मुरारी अन दिन जागत रहे दिन राती अपने प्रे प्रीत प्यारी तन मन वारी वार घुमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिन सजाएगा उभरे शब्द विचारी आप जगाए सही जागे गुर के शब्द विचारी नानक सही मुए जे नाम न चेते भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया तृप्त रहे आगाई संतो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या कट अंतर पूरे की वडियाई रहाओ आपे करता आपे भुगता देंदा रिजक सबाई जो किश करना सो कर रहा अवर न करना जाई आपे साजे श्रेष्ठ उपाय सिर सिर धंधे लाई तिसे सिरे वो तां सुख पावो सतगुर मेल मिलाई अपना आप उपाय अलख न लखना जाई आपे मार जिवाले आपे तिसनो तिल न तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवड़ भागी जिने एको जाता सच्चे रहे समाई आप स्वरूप स्याणा आपे कीमत कह न जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी आया सतगुरु बूझ बुझाई एक ना नावो आप भुलाए एक ना गुरमुख दे वडियाई एक ना नामो आप भुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सलाहो संतो तिस दी वड्डी वडियाई तिस बिन अवरना कोई राजा कर तपावस बणत बनाई न्याओ तिसे का है सद साचा विरले हुक्म मनाई तिसनु प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुर भेटे सो जन सीजै जिस हिरदे नाम वसाई सच्चा आव सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहा बिस्माद मेरा प्रभ रव्या श्रव थाई राम कली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन्ही किया प्रवृत पसारा किन्ही किया पूजा विस्थारा किन्ही निवल भयंग मसादे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आनन जाना वेसा रहाओ किन्ही ग्रे तज वन खंड पाया किन्ही मौन अवतूत सदाया कोई कहत अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्ही कहया हों तीर्थवासी कोई अन तज भया उदासी किन्ही पवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया किन्ही कहा मैं कुल्ले वड्याई किन्ही कहा बा बहु पाई कोई कहे मैं तने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्ही कुंगर नित कराई किन्हू वर्त नेम माला पाई किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर त्याया किन्ही सिद्ध बहु चीटक लाए किन्ही पीख बहु थाट बनाए किन्ही तांत मांत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतर कहावै पंडित को खट कर्म सहित स्यो मंडित कोई करे आचार सुकरणी मोहे दीन हर हर हर सरणी सगले कर्म धर्म जुग सोध बिन नाम ए मन ना प्रबोध कहो नानक जो सास

ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई रहाओ। सकल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुख लाई, पतत पुनीत किए खिन पीतरा ज्ञान अंधेर बन जाई। करण कारण सम्राट स्वामी नानक शरण आई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए। एक शब्द लिव लाई अंध गुप विख्या ते काढ़ियो, साज शब्द बन आई। जन्म मरण का सहसा चुका, बहुड़कत होना ताई। नाम रसायन एह मन राता, अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया, निचल वसया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी, हार बिन आन न पाई। नाम दान पाया वडभागी, नानक नरक न जाई। काल सियाणप उकत न मेरी, पूरे गुरु कमाई। जप तप संयम सा स्वच्छ है सोई, आपे करे कराई। पुत्र कलतर माया बिखिया मह, गुरु साचे लाए तराई। अपने जीते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। साच धर्म का बेड़ा बांधिया, पवजल भारत पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संभाओ, कल अंधकार दी पाई। अंतर जामी जीन का दाता, देख तृप्त अगाई। अकंकार निरंजन निरपो, साब जल थल रहा समाई। भगत दान भगतां को दीना, हर नानक चाचा माई। राम कली महला पंजवा, श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो। जन्म मरण की टेक, मुकुजल सदा सुखी। नानक सिमरत एक, मन धन राता राम प्यारे। हर प्रेम भगत बन आई, संतो सतगुर खेप निभाही। संतो हर नाम लाहा, दास को दिया। सगली तृष्ण उलाही, संत हो रहाओ। खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीर्त कहन न जाई। संतो चरण कमल स्यों, लागो ध्याना साचे दर्श समाई। संतो गुण गावत गावत भय निहाला, हर सिमरत तृप्त अगाई। संतो आत्म राम रविया सभ अंतर, कत आवै कत जाई। संतो आदि जुगादी है पीहो सी, सब जिया का सुखदाई। संतो आपे अंत अंत नहीं पाई है, पूर रहा सब ठाई। संतो मीत साजन माल जोबन सोत, हर नानक बाप मेरी माई। संतो राम कली महला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी। घूमन केर महा आत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सुखा बाहर सुखा, हर जब मलन भय दुष्टारी। जिस ते लागे तिन्ह सिम निवारे, प्रभ जियो अपनी कृपा धारी। उदरे संत परे हर सरनी, पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत यो फल पाया, एक केवल नाम अधारी। ना कोई सूर ना कोई हीना, सब प्रगटी जोत तुम्हारी। तुम सम्राट अकथ गोचर रविया, एक मुरारी। कीमत कहन कीमत कौन करे तेरी, करते प्रभ अंत न पारा वारी। नाम दान नानक वड्याई, तेरिया संत जन तेरा संत जना रेनारी। राम कली महला तीजा, नंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सती मन वजिया, वाधाइया राग रतन परवार परिया।

सुखत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणतास जियो। बिनकंत प्यारे नहि सुख सारे हार, कंगन त्रिग बना सुंदर सो जान, चतुर व्यति सास बिन जस इतना। ईति ओत दस अलोकन मिल मिलन की प्रभ प्यास जियो, बनवंत नानक धार कृपा मिलो प्रभु गुणतास जियो। सलोक जहन बुझी शीतल पाए, मन तन उपजी शांत, नानक प्रापूर्ण मिले द्वितिया बिनसी प्रातो। साध पठाए आप हर हार, हम तुम ते नाही दूर, नानक परम पाए मिट गए रमन राम परपूर संत। रोत सिर शीतल हर प्रगटे भगर पो जियो, जलन बुझी दस पाया बिनस माया तो रो जियो।

त्रैन त्रै भमन हरे भय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इस पुनी मन जप्या निर्मल मंत जियो बनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तारकंत जियो सलोक

संत चरण ब्रज सब परे मिटिया सगल कलेस जियो हम जान दुख हरे हर भक्त किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तल मनते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदको आदेश जियो बनवंत नानक माया तारो जोगो जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखने ओंकार एक ओंकार सर्ग प्रसाद ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जन चत ओंकार सैल जोग पय ओंकार वेद निर्मले निर्मय ओंकार शब्द उदय ओंकार गुरमुख तरे हुनम अखर सुनो बेचार हुनम अखर त्रह बंसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लेखन राम नाम गुरमुख गोपाला सहाओ ससे साब जग सहजो पाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझ सुज पढ़ पढ़ बुझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देख सच समाले बिन साचे जग काचा तंदे धर्म तरे धर्मा पुर गुणकारी मन धीरा तंदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पय मनूरा धन धरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमत करता जाने करते की मैत करता जाने कह जाने गुर सूरा

रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गुवाया। गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया। आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पियाया। एको एक कहे सब कोई हमें गर्भ व्यापे अंतर बारे।

गुण विचार गुण विचारे ज्ञानी सोए गुण में ज्ञान प्राप्त होए गुण दाता बिल्ला संसार सच्ची करनी गुर विचार अगम अगोचर कीमत नहीं पाए ता मिल गए जहन लाए मिलाए गुणमंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिल गया मीत काम क्रोध काया को गले ज्यों कंच सोहागा टाले

सो का जाए छिज दे खुले एक गांड चांद देखे जग घंड धूप शाम जे शाम का जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया सूची जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना

तिस मामा जय जय का जपो जगदीश गुरमत मिल गए बीस अकीस चाख बोलन क्या जग संवाद चोर मरे देखे परमाद जन्म हुए ने जीवन आसा आए चले पाए आसन रासा चो चो चाख माटी रल जाए काल न चापे हर गुण गाए पाई नाम ने दहर के हर के नाय आपे दिवे सहसवाए यानो बोले आपे बुझे आपे समझे आपे सुझे गुर का कहया अंक समावे निर्मल सुचे साचो पावे

शब्दी कर काज सार लहा साच न आवे तोटा। त्रैवण ठाकर प्रीतम मोटा ठाकर मनमा ठाकर मनमा रख उठाए ठक मोहि हवगन पछताए। ठाकर एक सबाई नार बहुते वेश करे कुड़ियार पार कर जाति ठाकर आई महल बलाई ठाक न पाई। शब्द सवारी सच प्यारी साई सुहागन ठाकर तहरी। डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार डैपन तन सुख नहीं बेंडेन बिन डर बिंठी डार। डरप मोई कर आपने दीठी कंतो सो जान डर रखिया। गुरे आपने निरपो नाम बखान डूगर वास तिखा कनी। जब देखा नहीं दूर तिखा नवारे शब्द मन अमृत पिया भरपूर। देह दे आख सब कोए जे पावे तदे गुरुद्वारे देवसी तिखा नवारे सोए। टंडोल टुंडत हौफरी टाए टाए पमन करार पारे पारे टहद टाए पाए औले निकसे पार अमर जाची हर मिले तिनके तिनके।